0: हो
1: कुश्ती तुतरला राजा मा जग राजा
0: अरे वार पट्टा
1: तांग मारू ना चिपट के लजोड़ी दारा ला जोड़ी दारा ला
0: हाय ना गबरो
1: अगा बगा
0: अगा पर काय बगा
1: हाय

0: अत हो
1: जय जोरी पाई मल बधाई की जय जोरी पाई मल बधाई की जय जोरी
2: पशिर पशिर पशिर।

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

दो को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: कह दूं तुम्हें
1: हाँ
0: या चुप रहूं
1: ना,
0: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है।

0: हमें तुमसे कितना प्यार है पारो, ये तो हम नहीं जानते।
1: मगर जी नहीं सकते।